याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाति अनन्तो दिव्येनि मोक्षं पन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मनव। මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා.

0: श्रीवेवा।
1: इसलिए स्वामिनी ओब सबबिन में सुविशुद्धे सिलु सुविशुद्धतावे उल्पत बोहान से में एहिन बोहान से के आत्मनंगे अनुभावेन में पांडु परिशुद्धवत करण में नप्यायदि अपे से अदुने में पांडु अपुदेसा अपे स्वामिन वने जेसुस क्रिस्तु महान से के श्री शरीरया श्री रुधिरया बावट पत्वनु संधाये उन महान से दुख सहित मरणेट सिय कैमेतेन पवरा दिए मिट पेर पुपे रागेनो बहान सेट तुति पुदा एक खड़ा मिसे कीमिन शी श्राव के इंट दून सेक ओब सम में इंगेन अनुभाव करन सब बिन में ओबुदेसा पवरा देनु लबन मागे शरीर आई रात्रि भोजने वलंदु पशु उन्नान से कुशलान दरगिन नवत तुति पुदा में से केमिन से श्राव के इंट दुन से ओब सम मेन गिन पाने करान सब विन मम अभिनव वूद अनंत वूद गिविस में मागे रुदिर कुशलान आई पाउ कमाव संधा बहुदेश साद सियल मनुष्य अनुदे सादे वगरुन लबन्ने मास्ते किरीम पिनिस में सिदु करान है।

0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी भगवान से कुतु से कर, स्वामी भगवान से उतानु से कर, स्वामी भगवान से नवत वडिन से कर।
0: एहिन प्यानी उन्वान से गे मरने तुत्ताने सीपत कर्मिन जीवन दायक पूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तपियो बट पुद कर्म ओबाहम सिटमिन ओबट सेवे खरान नट अप सुदुसान वाचिन सल की मगेन अपियो बट तुति पुदमो क्रिस्तुन महान से गे श्री सर रेटा श्री रुधि रेटा सहभागी बन अप सम शुद्धात्मन विशेन सत्कर्ण लिश अपि अवनतवा आयद सिटिमु स्वामिनी मुल्लु वे पेतर पवत्ना उबगे सुदो सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप सुदोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम सभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत्त ऐतुव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयानुकंपाव करे विश्वासे तब मिनेस्नुवन कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयानुकंपा कल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन्हि उबगे कैमत्ते इटुकल सीलु शुद्धवंतेइंद समग अपि सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुस्सन कल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत सा किरीमटद उबगे महिमे वर्णा किरीमटद उबगे पुत्र येसुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुन मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से करेद सियलु बलते देवी पियानने शुद्धात्मैनन् हा समग एक्वड वसन्ना वू ओब वहन्सेट सकल गौरवयत् मयि